0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचू
0: यू आर लंग यू बी रोटेला।

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो
2: Marvin, mama's boy, track nigga.
3: Governor on the beat.
4: I'm a beat DJ, DJ 4.

0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो
2: द ब्रोजिबिक्स डॉन मिलन्स एंटरटेनमेंट अ माफिनो कनेक्ट अ मम्मीज बॉय ट्रैक निकल जे